0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: टुडे वी फाइंड पीपल डिपॉजिटिंग देयर मनी इन बैंक्स लाइकवाइज डिपॉजिट द पावर ऑफ योर सेंसेस योर माइंड एंड द विजडम इन द बैंक ऑफ गॉड दे विल नेवर डिमिनिश दे विल कंटिन्यू टू ग्रो फॉर एवर एंड विल बी रिटर्न टू यू इन टाइम्स ऑफ नीड Sustain and safeguard sacred love. Never give vent to hatred. Consider whatever happens as good for you.

गुरमुख बिरला जाने। ये पंक्ति जिस विच सारे शब्द दा केंद्री भाव है, भगत जी दसदे हन कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करके नाम सिमरदा है